आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे, वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही। वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया। वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा, आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: Walk Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो, तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि you know, हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे हुए, पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भोकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जैसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारा हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आस पास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

0: जेके तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.

Walk Talk Radio. हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम. सपने बड़े देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है. तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम.

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप हैं और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: उसके लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है, और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, प्लीज कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में।

देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है जबकि पता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा, आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं सामने वाले की सिचुएशन को, हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है। खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपन माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

रेडियो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे. वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. This is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

0: Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा, so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.
1: Walk Talk Radio.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आस पास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे गिरफ्तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

रेडियो। हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फेक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे. Because सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं. आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. तो मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी. मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: विद गिरेंद्र भारती।
2: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

Radio. हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे. वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. This is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरी नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइन टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ इस तरफ लेकर आई है। डेस्टिनी, इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे, तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम आदमी, काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया, और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: तुझे के तार हिल गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

कि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है। या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, ये है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं। जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, तुम्हें बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio,

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को, लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय, माय नेम इज समर शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की यह हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं है। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो दोस्तों ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले। मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

रेडियो। हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: Talk Radio.
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. this is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हमने सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज करें? शायद वो टेस्ट्स हैं जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा, सो दैट हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. And don't ever listen to the naysayers. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम।

जाने, अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे मरना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है? नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि मुझे डेस्टिनी ने विषम पितामा बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूँ। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और विषम पितामा बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने SSC भी किए, BSc भी किए, LLB भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूँ, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने LLB किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: जे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी. ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने की बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: रेडियो।
1: हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: Walk Talk Radio.

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो। अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए, फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीख गया और आप नहीं सीखे। सदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज

पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारी प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था, उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे, उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। Walk Talk Radio.

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं।

दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नायलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा। देन वी ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स, हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, हम मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का? नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है? नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: भेजे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी

0: Talk Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं. हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

देखिए, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत. यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो. अब जरा अपनी और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है. हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, please complete this as soon as possible.

हाय माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: रेडियो।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. This is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हमने सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? समाज को नहीं, खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: मुझे के तार हिल गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: Walk Talk Radio.

0: Radio.
1: Hello, my name is Lucky Mehta. और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है. या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है. तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता. लाइफ में आप जहाँ भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहाँ भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो. कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है. और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं. लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए. आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा. कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना. हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं. बस वैसे ही हमारी जिंदगी है. जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं. मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा. आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो. तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए. जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो. दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है. हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है. बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे.
0: वॉक टॉक रेडियो.

रेडियो। हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

चाहिए, क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है। या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने

एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं। जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

0: खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।
1: यार कहां हो? आई हैव बीन ट्राइंग योर नंबर फॉर पास्ट 3 डेज। तुमसे गाना नहीं बन रहा तो मना कर दो, बट वी डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट। ओके, प्लीज कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया,

शर्म से पानी पानी। अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं सामने वाले की सिचुएशन को, हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% एफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% एफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं कि 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% एफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपन माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

Walk Talk Radio. हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना। Walk Talk Radio.

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

रेडियो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही अहमूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट. वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम चेंज करें? शायद वो टेस्ट्स हैं जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा, सो दैट हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. And don't ever listen to the naysayers. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, अब मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, नहीं अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे, तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं, मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का, नहीं साहब। अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, उसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

मेरे दोस्त, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में, तू चाहे वो वक्त ले ले।

0: रेडियो।
1: कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

बात है 2018 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स की। सबकी नजरें थी ट्रैक पे भागते हुए खिलाड़ियों पर और उन्हीं खिलाड़ियों में भाग रही थी हिंदुस्तान की बेटी, जिसको उस समय शायद ही कोई जानता था, या यूं कहें कि शायद ही किसी को पता था कि ऐसी कोई लड़की भारत को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करने भी गई है। रेस खत्म होते ही इतिहास रचने की खुशी मनाती हुई और भारत का नाम ऊंचा करने वाली उस चैंपियन की बात कर रही हूँ मैं आज आपके साथ कविता, और शो का नाम है अनसंग चैंपियंस, जहां मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूं दुनिया के ऐसे दमदार चैंपियंस की कहानियां, जिन्होंने अपने सपनों के सामने दुनिया की किसी भी मुश्किल को कभी ना आने दिया और मिसाल बने हम सबके लिए अपने जोश और जुनून से। आज हम शो में बात करेंगे भारत के लिए 2018 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड लाकर इतिहास रचने वाली हिमा दास की। अब तक हिमा दास कई सारे मेडल्स देश के लिए ला चुकी हैं और ये असम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा ने मात्र 18 साल की उम्र में इतिहास रचने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक भारत का नाम बहुत से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रोशन करके हमें गर्व करने का मौका दिया है। हिमा के मन में बचपन से इंडियन जर्सी पहनने का जुनून था। वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती थी और ये अक्सर उनको अपने इंटरव्यूज में कहते सुना गया है। हिमा की माने तो सचिन ही उनकी इंस्पिरेशन है, जिनके कारण उनके मन में इंडियन जर्सी पहनने का सपना घर कर गया था। यूं तो हिमा खेलना सिर्फ इसलिए चाहती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और साथ ही साथ उनको लगता था कि स्पोर्ट्स की वजह से उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पर जब उन्होंने सचिन को जर्सी में देखा तो वो इंडियन जर्सी पहनना उनका लक्ष्य बन गया था। वो एक ऐसा सपना था जो हिमा किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। हिमा दास के जन्म और घर की बात करें तो हिमा का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नागांव जिले के ढिंग गांव में हुआ था और इसी वजह से वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती हैं। हिमा एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो 6 भाई-बहन हैं। हिमा को बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि थी। उनके पापा भी फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और काफी क्लब्स के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसे आगे न ले जा सके। उनसे इंस्पायर होकर ही हिमा ने फुटबॉल खेलना शुरू किया और यही एक कारण है कि उनको अपने पिता का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और हिमा को समझ सकते थे। हिमा फुटबॉल तो अच्छा खेलती ही थी और उसमें आगे भी जाना चाहती थी, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फुटबॉल छोड़कर ट्रैक स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया? चलो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हिमा ने ट्रैक गेम्स को ज्वाइन किया और इतनी छोटी सी उम्र में इतना काम कर लिया। हिमा को स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी थी और वो स्कूल के हर एक इवेंट में भी भाग लेती थी। रेसिंग, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और बाकी और सब में गोल्ड हासिल करती थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी थी। हिमा के पास ना ही फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ग्राउंड होता था और ना ही अच्छे जूते, इसलिए वो अपने खेत में गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। कुछ समय बाद स्कूलों में प्रतियोगिताएं खत्म हो गईं। तब उनके स्कूल में एक योगा का नोटिस आया। ये एक महीने का कैंप था और सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक हिमा रोज इसमें जाती थी। हिमा योग को जिस डिसिप्लिन से फॉलो किया करती थी, उसी डिसिप्लिन को देख के हिमा के पीटी टीचर ने उन्हें एथलीट बनने का सुझाव दिया। उनका सुझाव मानकर हिमा ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आती थी, उन्हें डर था कि इस मुकाबले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, पर पहुंचने पर हिमा को रियलाइज हुआ कि उनके पास भागने के लिए स्पाइक्स वाले जूते भी नहीं थे। हिमा ने जूतों की परवाह ना करते हुए रेस में पार्टिसिपेट किया और वो अपने साधारण जूतों में भागी और नागांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर हिमा दास डिस्ट्रिक्ट खेलती रही और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे हिमा ने अपने सपने को पाने की शुरुआत की। अब हिमा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना नाम बना लिया था, पर ऐसे जाने माने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस तो साल में एक ही बार होते थे, तो अब सवाल ये था कि बाकी के समय क्या करें। ढिंग गांव में इतनी प्रैक्टिस के ज्यादा साधन तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना शुरू किया,
ताकि उनका खेल से संबंध बना रहे। कुछ समय बाद 2017 आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक महीने के लिए फंड रेजिंग कैंप का आयोजन किया गया, तो हिमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहां मन लगाकर अभ्यास किया। हिमा के इस लगन और अभ्यास को फंड रेजिंग कैंप में दो शख्स गौर से नोटिस कर रहे थे। वो शख्स थे निपुण दास जी और अभिजीत जी। उन्होंने हिमा को गुवाहाटी आने को कहा क्योंकि वो हिमा की प्रतिभा जान गए थे। इस सुझाव को लेकर हिमा वापस अपने घर गई और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा की। इस बात से उनकी माँ ज्यादा खुश नहीं थी, पर उनके पापा का उनको पूरा सहयोग था। उनके पिता रंजीत दास जी जानते थे कि एक प्लेयर का दिल कैसा होता है। वो हिमा का जज्बा समझते थे और आपको तो पता है माँ का दिल कैसा नरम होता है। वो नहीं चाहती थी कि हिमा उनसे दूर जाए, पर हिमा के जुनून ने अपनी माँ को भी मना ही लिया। जेब में सिर्फ 350 रुपए लेकर हिमा अपने गांव से गुवाहाटी को चली। हिमा मात्र 17 साल की थी। उनका इस जगह रहने का कोई ठिकाना न था। काफी दिक्कतों के बाद निपुण दास जी और अभिजीत जी ने गुवाहाटी के एक डॉक्टर के सहयोग से हिमा के रहने और खाने का इंतजाम किया। गुवाहाटी में 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद हिमा को खेलने के लिए हैदराबाद जाने का मौका मिला। उनका जो बचपन से सपना था कि वो एक दिन इंडियन जर्सी पहने, वो आखिर पूरा हो गया था। हैदराबाद में जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप की एक सिलेक्शन लिस्ट निकली और उसमें बैंकॉक जाने की टीम में हिमा का भी नाम आया। हिमा फिर बैंकॉक गई। वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर हिमा वहाँ 6th पोजीशन पे आई। जाहिर सी बात है वहाँ का कंपटीशन लेवल भी बहुत हायर रहा होगा, लेकिन हिमा 6th आने से बिल्कुल निराश नहीं हुई क्योंकि वो जूनियर यूथ एशिया चैंपियनशिप में जरूर 6th आई थी, पर इंडिया से तो वो पहली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था और इस बात की खुशी हिमा को कई ज्यादा थी। और इस इंडियन जर्सी पहनने का और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा का पहला कदम पूरा हुआ। जूनियर यूथ एशियन चैंपियनशिप के बाद हिमा वापस गुवाहाटी जाकर प्रैक्टिस करने लगी। तब उनके कोच निपुण जी ने हिमा को कहा कि अब सीनियर लेवल की तैयारियां शुरू करो। तो 18 साल की हिमा ने सीनियर लेवल की ट्रेनिंग शुरू कर दी और चेन्नई जाकर सीनियर लेवल पर परफॉर्म किया। उस कॉम्पिटिशन में हिमा सबसे छोटी थी और अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़े प्रतियोगियों को देख के हिमा डर सी गई और ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई। उस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच से उनको काफी डांट पड़ी और डांट का असर कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हिमा ने फिर गोल्ड लाके दिखाया। इस रेस को फेडरेशन के मेंबर्स भी परख रहे थे। कुछ समय बाद निपुण दास जी को फेडरेशन मेंबर्स ने कॉल करके कहा कि हिमा को इंडियन टीम भेज दो। हिमा की लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट था। हिमा काफी खुश थी। हिमा ने लगन के साथ इंडियन टीम के सीनियर से ट्रेनिंग ले, पटियाला, पोलैंड और भी अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग ले और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में बैक टू बैक इतिहास रचा। उनकी इस उपलब्धि के बाद एडिडास जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड ने उनको घर आते ही अपना ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया ही, साथ ही साथ उनके नाम के कस्टमाइज शूज भी बनवाए। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो पल एक लड़की के लिए जिसके लिए बचपन में कभी शूज अफोर्ड करना ही एक स्ट्रगल था, जो अपने साधारण जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। आज वो उसी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। 2019 का जुलाई का महीना हिमा का रहा। 20 दिनों के अंतराल में 5 गोल्ड मेडल, एक बड़ी उपलब्धि हिमा ने देश के लिए हासिल करी। हिमा दास ने अपने हुनर के बलबूते पर फेमिना, वोग जैसी मैगजीन के कवर पर अपना चमकता चेहरा पहुंचाया। ये वो मैगजीन्स हैं जिसपे खूबसूरती के मानक तय होते हैं। ऐसे मुकाम पर हिमा सिर्फ अपनी काबिलियत से पहुंची हैं। हिमा दास की कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और मेहनत की। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर से लाऊंगी कल एक और ऐसी कहानी। मैं कविता, शो का नाम है अनसंग चैंपियंस और सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

तो दोस्तों, अगर हम कर्म की बात करें तो वो हमेशा कहता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही वो लौटकर आपके पास आएगा। तो अगर कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के साथ अच्छा करने चले हैं और वो आपके साथ हमेशा बुरा ही करता है, तो अच्छा करने से पहले कभी मत सोचना कि ये मेरे साथ बुरा करता है तो मैं भी इसके साथ बुरा ही करूँगा, क्योंकि जो भी हो कर्म हमेशा लौट कर आता है। और जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ लोग पछताते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत या धोखा क्यों किया। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे मॉक टॉक रेडियो।

लोगों को जानने से अच्छा है खुद को जानने की कोशिश करो। दोस्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को पहचानो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। यस, जिंदगी यही कहती है कि हम लोग अपने आसपास हर चीज में कमी, दोष और सब चीजें ढूंढते रहते हैं, बट जो खुद नहीं देख पाते खुद में, अगर हम खुद में जान के देखते हैं और खुद से बात करते हैं तो हमें पता चलता है हम सब में कमी है, बट हम सब लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को पहचानिए और उसी को कुछ चेंज करके एक नए रूप में जीने की शुरुआत करिए।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, जिसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। कोशिश इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ पाए। है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा अपन लो फील करते हैं, या हमको थोड़ा सा लगता है कि यार हमारे साथ में कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी हार मानता है, किस में कितना पेशेंस है। और जितना ज्यादा पेशेंस है ना हमारे अंदर, या जितना ज्यादा हम कहते हैं ना कि धैर्य रखने वाले लोगों में से हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी इजी गोइंग रहेगी। क्योंकि ऐसे लोगों को हड़बड़ी नहीं होती। हालांकि बहुत ज्यादा धैर्य भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जल्दबाजी भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं वही वाली चीज कि हर एक चीज स्वादानुसार होनी चाहिए, मिर्च हो या नमक। हद से ज्यादा चीनी भी चीज को कड़वा बना सकती है, भले ही उसका टेस्ट मीठा होता हो। तो वो वाली चीज है, पेशेंस भी एक लिमिट का होना चाहिए, और इंपेशेंट भी अगर आप हैं तो एक लिमिट तक होना चाहिए। इंपेशेंट कुछ चीजों को लेकर के होना चाहिए। आप यूं ही हर एक चीज को ओके ठीक है आ जाएगी, कल को आपको एकदम से ब्लड की जरूरत है और आप आराम से धैर्य से बैठे हैं, कभी कोई आएगा तो मिल जाए, वो नहीं चल सकता ना। ऑपरेशन अगर जो अभी होना है तो ब्लड अभी चाहिए, वहां आपका धैर्य काम नहीं आएगा। वहां पर आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इंपेशेंट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। एट द सेम टाइम जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, इनके साथ में किस तरह से सर्वाइव करना है, इनके साथ में जिंदगी जीना किस तरह से सीखना है, ये हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है। इतनी सारी बीमारियां आई, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उनके साथ में हम कहीं ना कहीं जिंदगी को जीना सीख रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए ना, अनलॉक के फेज चल रहे हैं। अभी हम कोरोना के साथ में अपनी जिंदगी को सेटल करने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट काफी हद तक कर चुके हैं। प्रॉपर सेफ्टी के साथ में हम बाहर निकल रहे हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ को वापस लेकर के आ रहे हैं, और यही तो एक तरीका है। ये कोरोना जैसी चुनौतियां हैं, इनके साथ में अपनी जिंदगी में किस तरह से एडजस्ट करना है, ये हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है। ठीक वैसे ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में जो मुश्किलें हैं, उनके साथ में हमको आगे बढ़ना सीखना होगा। हम ये चाहे कि नहीं यार मुश्किलें ही नहीं आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जिस रास्ते में कोई मोड़ नहीं होते, वो रास्ता कहीं के लिए नहीं जाता। तो अगर जो कहीं जाना है तो रास्ते में मोड़ तो होंगे ही होंगे। रास्ते के गड्ढे भी जरूरी हैं जनाब, वरना अक्सर हम अपना ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं, वरना उनका क्या असर हो सकता है। तो जापानीज का क्या है कि इनको ना मछलियां सालों से बहुत ज्यादा पसंद है। इनका जो फूड है, इनकी जो डाइट है, उसका एक ऐसा पार्ट है जिनको ये शामिल करते ही करते हैं। और जो फ्रेश मछलियां हैं, उनका टेस्ट इन लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को खाते हैं या जानते हैं, तो उनका टेस्ट आप यूं पकड़ लेते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है। तो ऐसे इनके साथ में भी हुआ कि जो मछलियां हैं, उनको मछुआरे समुद्र के बीच में से जाकर के लेके आते थे, लेकिन जब तक वो आती थी, शहर के अंदर आती थी, तब तक वो मर जाती थी, बासी हो गई। अब समस्या ये है कि वो फ्रेश मछलियों वाला टेस्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा, तो लोगों ने बासी मछलियां खरीदना कम कर दिया। तो जो मछुआरे थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए ताकि लोग और ज्यादा खरीदें, ये बासी ना हो। तो मछुआरों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारी बोट में फ्रीजर लगा देते हैं, वो मछलियां पकड़ते उनको फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ताजी बनी रहती। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का भी टेस्ट पहचान लिया, उनको वो फ्रेश वाली मिली नहीं रही, उतनी टेस्टी नहीं है ये। तो ऐसे में लोगों ने उनको भी खरीदना कम कर दिया। मछुआरे फिर से एक बार टेंशन में कि अब क्या करें। फिर से उनकी पूरी मीटिंग हुई, बाकायदा सोचा, आइडियाज लिए गए, एक सलूशन मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक फिश टैंक बनवा लिया, मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे हुए फिश टैंक में डाल देते, और इस तरह से ताजी और जिंदा मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन अब इसमें भी समस्या, फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक तो इधर उधर चलती, लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी तो एक ही जगह रुक जाती। अब जब तक मछुआरे किनारे तक पहुंचते, वो सांस तो ले रही होती, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में वो खुले में इधर उधर घूम रही हैं, तो न तो उनके अंदर वो एनर्जी है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता, और लोगों ने चक करके ये भी अंतर पहचान लिया कि ये ताजी तो नहीं है। मछुआरों को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें क्या, टेंशन में आ गए वो। पूरा उनका एसोसिएशन, पूरा यूनियन बैठ करके डिसाइड कर रहा था कि क्या करें क्या करें, लोगों को बोलें कि हम फ्रेश नहीं दे पाएंगे। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा साइड से बोला, उसने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम ये है ना कि फिश टैंक में मछलियां एक जगह रुक जाती हैं और इस वजह से उनकी उनका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। अब एक काम करिए, एक छोटी सी शार्क लीजिए और उन मछलियों के बीच में डाल दीजिए। लोगों ने ये सुना, उनको आइडिया अच्छा लगा, और उसके बाद में उन्होंने यही किया। उन्होंने फिश टैंक में मछलियां डालने के बाद एक शार्क उसमें डालनी शुरू कर दी।
अब वो जो शार्क थी वो फिश टैंक के अंदर की कुछ मछलियों को खा तो जाती थी, थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थीं उनमें एनर्जी और ताजगी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क है, उनसे बचने के लिए मछलियां भागती रहती थी, शार्क उनके पीछे, वो इधर उधर भाग रही है, डर के मारे पूरे समय इधर उधर मछलियां भाग रही है। यानी कि टैंक में है वो, लेकिन फिर भी फ्रेश है, और लोगों ने बड़े चाव से उनको लेना, खरीदना और खाना शुरू किया। उस छोटे से बच्चे की सजेशन की वजह से जापानीज मछुआरे जो थे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। और यही तो हमारी जिंदगी में होता है, हमारी जिंदगी में भी ये शार्क के रूप में जो चैलेंजेस है ना, ये जब तक नहीं आते हम ऐसे ही बेजान पड़े रहते हैं, सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा दिली हमें होती ही नहीं है, एक ही रूटीन में बंद के रह जाते हैं। 9 से 5, ये 9 से 5 इतना ज्यादा बोरिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइफ में कुछ और डिफरेंट है नहीं। सुबह उठ करके ऑफिस जाना, ऑफिस में पूरे दिन काम करना, शाम को वापस आना, सो जाना, खाना खाके और वही रिपीट करना। इसीलिए तो वीकेंड्स दिए गए, ताकि हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता रहे, हम हमारी जिंदगी में कुछ नया करें, उन मछलियों की तरह बस एक धर्रे पर ना चले। और यही ट्राई करिए, चैलेंजेस हैं तो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम एक जगह मत पड़े रहिए, बोरिंग हो जाती है जिंदगी, और छोटी सी जिंदगी, एंजॉय करो इसको जो पल मिले। कुछ लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में देते हैं, बैठे हैं आराम से, वीडियोस देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर इतने सारे लोग हैं, निकलिए, दुनिया को देखिए, जिए। वैसे भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम ऑफिस के अंदर ही दे रहे हैं, 24 घंटे में से हर दिन 9 घंटे ऑफिस के अंदर। इससे ज्यादा वक्त मत दो, स्मार्टली काम करो, टाइम पर काम निपटाओ और निकलो, और ये चैलेंजेस जो है इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ में रहना सीखो, इनके साथ में आगे बढ़ना सीखो, और उसके बाद में जो जीत होगी वो हमारी होगी। और ये हमें क्यों लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ हमारी जिंदगी में है? जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े चैलेंजेस। जो हमारी मंजिल है ना, वो भी उस समय पर जाते ही सफर हो जाएगा, यकीन मानिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे इसी बारे में, मंजिल और सफर में क्या डिफरेंस है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे।
1: Lock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमारी जिंदगी कभी भी कुछ मिनटों की मेहमान नहीं होती जो गिनती के पलों में बदल जाए। पर हाँ, अगर आप अपने फैसले कुछ मिनटों के आधार पर लेते हैं तो वो आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपनी लाइफ के छोटे या बड़े फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक कोशिश छोटी सी आपको मोटिवेट रखने की, आपको पॉजिटिव रखने की, और आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं कोशिश करते हैं कि उनका हल थोड़ा सा मिल सके, ताकि आपकी जो स्माइल है ये खूबसूरत वाली ये यूं ही बरकरार रहे, आपका चेहरा खिला खिला रहे और सेल्फी के लिए एक्स्ट्रा पाउट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही स्माइल आप कर सकें। सो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मंजिल और सफर के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। This is how it works. I mean, यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट में मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया, आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है, मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना हमने अलग अलग कुछ गोल सेट किए होते हैं। किसी इंसान का गोल है कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, किसी इंसान का गोल है कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी इंसान का गोल है कि उसको मैनेजरियल पोजीशन पर जाना है, मैनेजर बनना है, किसी इंसान का गोल कुछ और है। हर किसी के गोल अलग हैं, वो गोल तक पहुंचने को हम मंजिल मिलना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एंड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट वहां से एक अलग सफर शुरू होता है, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार सफर शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मेरा सपना है कि मुझे अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो कि इस शहर में सबसे बड़ा हो, जिसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हों। मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया, मैं वहां तक पहुंच गया,

0: जो मेरी मंजिल मिल गई?
1: नहीं, सफर तो जाने मन अब शुरू हुआ है, बड़े चैलेंजेस तो अब आएंगे। छोटे रास्तों पर आप आराम से चल सकते हैं, बड़े रास्तों पर ज्यादा केयरफुली चलना पड़ता है।
0: वही वाली बात कि जितने बड़े गोल्स होते हैं उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं।
1: तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मुकाम होते हैं।
0: तो मुकाम के पीछे भागिए, मंजिल के पीछे नहीं, क्योंकि आप वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही आपके फिर गोल बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो बड़े छोटे छोटे से गोल्स होते हैं हमारे, बड़ी ही छोटी छोटी सी मंजिल होती है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगी होती, हमको लगता है 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम हमारे खर्चे पूरे कर सकें, होता ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मुझे मेरे घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, मेरी जिम की फीस, मेरा पेट्रोल, मेरा ये वो, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। जब 15-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाती है फिर हमको लगता है यार 50-60 हज़ार तो हूं कम से कम, यहां तक पहुंचते हैं तो फिर लाखों में होने लगता है। धीरे धीरे धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और जैसे जैसे हम हमारे गोल्स को अचीव करते जाते हैं हमारे नए गोल सेट होते जाते हैं। कभी हमारा सपना सिर्फ साइकिल का होता था, फिर बाइक का हो गया जब साइकिल मिल गई, तो फिर जब बाइक मिल गई तो कार का हो गया, जब कार मिल गई तो फिर ऑडी BMW का हो गया। बदलती जाती हैं चीजें, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इच्छाओं को खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई ना तो जिंदगी से रंग चले जाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं और हम उन्हीं को पाने की या पूरी करने की कोशिश करते हैं और वही तो फन है जिंदगी का। वरना एक पेड़ को देख लीजिए ना, बड़ा होता है, एक ही जगह रहता है और वैसा ही खत्म हो जाता है, सालों साल तक वही चलता रहता है प्रोसेस। उसकी जिंदगी में डिफरेंट कुछ नहीं है, सीजन आता है, फल आते हैं, लोगों को फल देता है, वापस पतझड़। हमारी जिंदगी, हम इंसानों की जिंदगी अलग है, क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग हैं। जानवर हैं, उनके कोई ऐसे गोल्स नहीं है, उनका बस एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है कि उनको खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब इस एपिसोड में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो मंजिल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, मंजिल है ही नहीं कोई, पूरी जिंदगी सफर में जाती है और फाइनली गुजर जाते हैं हम। मिली है आज तक किसी को मंजिल? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से जो मंजिल है सफर वहां पर भी है। रास्तों की तरह जो एंड पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां सड़क खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि ये खत्म है यहां पर सड़क, वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट और आगे बढ़ जाता है और सड़क कहीं और खत्म हो रही होती है, बट असल में सड़क कहीं खत्म होती ही नहीं। यही बात है कि मंजिल जैसी कोई चीज नहीं है, मुकाम होते हैं और उन मुकाम की लड़ाई है हमारी ये पूरी जिंदगी जो हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। दूसरा, इच्छाएं खत्म नहीं होनी चाहिए, जीने का मजा ना खत्म हो जाता है, आप प्रोग्रेस करना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लोग इसको लालच बोलते हैं बट मुझे लगता है ये लालच नहीं है, ये पुश है। हम अगर जो सोचेंगे नहीं, उसके सपने नहीं देखेंगे तो उसको पाएंगे कैसे? और कोई बुराई नहीं है इसमें, आज मेरे पास बाइक है, मुझे कार की चाहत है, आज मेरे पास कार है तो मुझे, अब सपोज मेरे पास हैचबैक है, मुझे SUV चाहिए या फिर मुझे जीप चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और वही तो फन है। ये लालच नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जुनून है, एक पुश है जो हमें पीछे से मिल रहा है और जो बहुत जरूरी है। तो अपनी इच्छाओं को बरकरार रखिए, मंजिल की लड़ाई मत लड़िए, मुकाम की लड़ाई लड़िए, क्योंकि मंजिल है ही नहीं इस दुनिया में। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको समझ आए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी हालात में है हंसिए और मुस्कुराइए। एक बात बताइए, आज आपका बुरा वक्त चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ जो आपके हिसाब से सही नहीं है? आपके हिसाब से इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके बोला है क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सही होती हैं जो आज गलत हैं। हम आज देख नहीं सकते उनका पॉजिटिव साइड, जिस तरह से दवा कड़वी होती है लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो हमारे भले के लिए है, ठीक वैसे ही आज की मुश्किलें, आज का बुरा वक्त किसी ना किसी के अच्छे दिन के लिए ही बना हुआ है। वो उस वक्त जाके हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यार ये हुआ, अच्छा ही हुआ। तो इसलिए आज का जो बुरा वक्त है, क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन किस बात की। जीरो से शुरू किया था आपने, यहां तक खुद के बलबूते पर पहुंचे हो, ये याद रखना। और जब आप यहां तक पहुंच सकते हो ना, तो कितने ही नीचे गिर जाओ आप फिर से वापस उतना ही ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। फेलियर्स को कभी भी दिल पे मत लेना।

जीवन में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, कितने भी दिक्कतें क्यों ना हो, तुम कभी कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समुद्र कभी सूखा नहीं करते।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

वेलकम बैक, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। कैसे हैं आप? पहले से ज्यादा खूबसूरत? ऑफ कोर्स होंगे यार। ट्रांसफॉर्मर्स की कोशिश भी यही है कि थोड़े से आप स्माइल करते रहिए, और ये स्माइल है ना, ये बेस्ट मेकअप है इन दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा स्माइल करिए, आप यूं ही खूबसूरत लगने लगते हैं। एक कहावत मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जरूर कहा करते थे, मैंने बचपन में ये कहावत बड़ी सुनी है, तो वो ये बोला करते थे कि अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। बेसिकली इस कहावत का मतलब ये था कि आपको जो काम करना है आप खुद करो, तभी आप उसको बेहतर कर पाओगे। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा काम कोई और करके दे नहीं सकता। अगर आप किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो कोशिश करो कि उसको खुद करो, क्योंकि जब आप खुद करोगे तो अपने तरीके से कर पाओगे। किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। तो एक बार एक गांव में किसान रहता था। उसके गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसका फसल बोने के कुछ दिनों के बाद में उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ वक्त बीता, चिड़िया ने वहां पर दो अंडे दे दिए। उन अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए और बड़े मजे से आराम से वो खेत में रह रहे हैं। कुछ महीनों के बाद में फसल की कटाई का वक्त आ गया। तब तक वो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को ये टेंशन कि अब उनको इस खेत को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फसल की कटाई होगी तो उनका घोंसला वैसे ही बिगड़ना है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा ताकि वो फसल कट सके। और ये सुनकर के चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौटी तो बच्चों ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किसान आया था और वो ये बोल रहा था कि अपने पड़ोसी को भेजेगा और ये फसल कटवाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है यहां पर, हमें रात में ही किसी दूसरी जगह के लिए निकल लेना चाहिए। चिड़िया ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। इसके बाद में आराम से वो सो गए और चिड़िया की बात एकदम सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान फिर से खेत में आया। खेत को जैसे का तैसा देख करके बुदबुदाने लगा कि यार ये पड़ोसी तो नहीं आया, ऐसा करता हूं कल अपने किसी रिश्तेदार को यहां पर भेजता हूं, वो फसल काटेगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से सुनी। चिड़िया जब वापस लौट करके आई, उसको फिर से बताया कि ये किसान आज बोल रहा था कि मैं किसी रिश्तेदार को भेजूंगा। चिड़िया फिर से मुस्कुराई, बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान का रिश्तेदार नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान कि उसकी माँ जो बोल रही है उसकी सब बातें सही साबित हो रही है, ऐसे कैसे पता है इसको कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगले दिन शाम को फिर से किसान खेत में पहुंचा। खेत की फसल देखी तो वैसी की वैसी खड़ी हुई। बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है, कल मैं खुद आकर के अपनी फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात सुनी। जब उनकी मां लौट के आई तो उन्होंने बताया कि आज किसान ये बोल रहा था कि कल मैं खुद आकर के अपनी कटाई करूंगा। तो चिड़िया बोली, बच्चों अब समय आ गया है इस खेत को छोड़ने का, हम आज की रात ही ये खेत छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। अब दोनों बच्चे हैरान कि इस बार में ऐसा क्या है जो माँ ने खेत छोड़ने को कहा है। उन बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो अब आएगा ही आएगा, दो बार उसने और भी बोला था तब भी तो नहीं आया कोई। तो चिड़िया ने कहा कि देखो, पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट था, उसने दूसरों को कह करके अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और इसीलिए वो जरूर आएगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ करके कहीं और चले गए। अगले दिन किसान आया, उसने अपनी कटाई शुरू कर दी। कहने का मतलब, दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तय समय पर खत्म हो और परफेक्शन के साथ में हो, वैसा ही जैसा आप चाहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। ये चीजें हमारे पापाओं से बहुत सीखने को मिलती है। अक्सर वो ताने मारने में कह देते हैं ना कि तुमसे काम करने से बेहतर है हम खुद ही कर लें। तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जैसा काम वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। कभी आपने नोटिस किया है घर में ऐसा होता है, जो हमारे दादाजी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, पापा जी चाचा जी, वो लोग हमसे काम करने को बोलते हैं, एंड ये बचपन में ज्यादा होता है। हमारा किया हुआ काम उनको पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही लेते हैं। मेरे दादाजी के साथ में ऐसा था, वो मुझे किसी काम के लिए बोला करते थे, मैं करता था, उनको पसंद ही नहीं आता था, चार कमियां निकाल के मेरा माथा खराब, एक तो काम करो ऊपर से इनकी मीन मेक सुनो, हर एक बात में कमी निकालने की क्या जरूरत है, कभी तो कोई अच्छा काम करा ही होगा ना मैंने। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, आज इतना बड़ा हुआ हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो हमको काम के लिए बोलते तो थे लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग थे, उनके हिसाब से थे, और मैं काम करता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो टेक्निकली तो यहां पर
दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। खैर इस चीज को जज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को सिखाना भी जरूरी है उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल के, तो उनका वो वाला पॉइंट में भी रहा होगा। बट आप अगर जो चाहते हो कि आपका काम उसी तरीके से हो जैसा आप चाहते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, तो आप खुद करिए या खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए, औरों को अपने सामने लगा करके काम करवाइए। तो बस ये ध्यान रखिए कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, खुद के खाने से ही भूख मरती है, खुद के कपड़े पहनने से ही तन ढकता है। खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद से एक्सपेक्टेशंस रहें, दूसरों से उम्मीदें जितनी कम होंगी आपका दिल टूटने का चांस उतना कम होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। भरोसा करें तो खुद पे करें।

आपके अंदर का टैलेंट क्या है ये सिर्फ आपको ही पता है। हमें किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये सिर्फ आपको ही पता है। दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को तो आपको खुद ही पहचानना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो कि आपको उस काम को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से करना है या आप कर सकते हैं। प्लानिंग करो कितना क्रिएटिव तरीके से उस काम को कर सकते हो। देखो जो भी करो दिल और शिद्दत से करो, उसके बाद जमाना खुद ही आपके लिए तालियां मारेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: जिंदगी में अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, वो भरोसा आप दोबारा कायम या फिर जीत नहीं सकते। भरोसा किसी भी काम को लेकर हो सकता है। ऑफिस में बॉस का आपके ऊपर भरोसा, आपके लाइफ पार्टनर का आपके ऊपर भरोसा, खुद के सपनों को पूरा करने का भरोसा, किसी भी चीज को पाने का भरोसा। लाइफ में भरोसे की अहमियत अक्सर टूट जाने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए लाइफ में आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, लेकिन भरोसा मत टूटने देना, भरोसे पर कायम रहना। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वालों को आपके भरोसे की अहमियत के बारे में पता चलेगा।
0: वक्त

हाय, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिस पर दुनिया चल रही है, एक ऐसी चीज जो बड़े से बड़े झगड़े को यूं खत्म करा सकती है, एक ऐसी चीज जो अगर जो हारने वाला कर दे तो जीतने वाले का जश्न थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, एक ऐसी चीज जो रिश्तों को मजबूत कर सकती है। स्माइल की बात हो रही है, ये वो मुस्कुराहट है, इसमें इतनी ताकत है। हम कितने ही गम में हो, हम कितने ही परेशान हो, अगर जो हम स्माइल करेंगे तो जमाने को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। इनफैक्ट हम खुद भी अच्छा फील करेंगे, हमारा वो जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कभी परेशानी में मुस्कुरा के देखिए जनाब, रीजन हो तब तो जमाना मुस्कुराता है। सेलिब्रेट करिए, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अफसोस हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और कितनी छोटी है, इसका रियलाइजेशन हमको तब होता है जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हों में होते हैं। फिर जब हम काउंट करते हैं ना कि हमने क्या किया, तो समझ आता है कि क्या फायदा यार। एक बात बताओ, अभी आपको लगता होगा ना जो आपकी स्कूल लाइफ थी कितनी अच्छी थी यार, लेकिन स्कूल लाइफ में क्या करते थे हम? स्कूल लाइफ में हम इस लाइफ के आने का इंतजार करते थे कि हम जब पैसे कमाएंगे, हमारे पास में पैसा होगा, फ्रीडम होगा, हम जब चाहे दोस्तों के पास जा सकेंगे, उनके यहां पर रुकने के लिए हमें मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घूम सकेंगे, हमें तब ये चाहिए था। अब हमें वो चाहिए। हर एक फेज हसीन है, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो जवानी और बैचलरहुड हो, या फिर शादीशुदा जिंदगी हो, हर चीज के अपने मजे हैं, हर चीज का अपना फील है। उस फील को महसूस करिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर पल को सेलिब्रेट करो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं ये जरूरी नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आप दुनिया में हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे लोग नहीं हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आपको भरपेट रोटी मिल रही है, न जाने कितने लोगों को नहीं मिल रही है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में कुछ पैसा है, बहुतों के पास नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में अपने हैं, उनसे पूछिए जिनके पास में अपने नहीं है, मुस्कुराइए क्योंकि आपके पास में आपका लाइफ पार्टनर है, बहुत सारे लोग आज भी अधूरे जी रहे हैं। 50 रीजन है मुस्कुराने के और खुश होने के, और कौन से रीजन चाहिए हमको? वो इमेजिनरी आर्टिफिशियल रीजन जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, तो हम गलत हैं, हमको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, ठोकर लगे मुस्कुराइए, दुख हो मुस्कुराइए, कोई गलत करके जाए मुस्कुराइए, आपके साथ में गलत हो जाए मुस्कुराइए, आप अच्छा करिए मुस्कुराइए, आपके साथ में कोई और बुरा करके चला जाए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी जो हंसी है, आपकी जो मुस्कुराहट है, ये आपसे है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, यूनान के जो किंग थे वो किसी बात से अपने मंत्री से नाराज हो गए, और नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। कहा कि शाम को 6 बजे कैसे भी करके वजीर को फांसी दे देनी चाहिए। जब उनको फांसी की सजा दी गई थी, वजीर उस वक्त दरबार में नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान करके सैनिक की एक टुकड़ी पहुंची वजीर के घर और उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां पर तो एकदम जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का बर्थडे था, उसके घर पर रिश्तेदार थे, दोस्त थे, खूब चहल पहल थी, म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, कुल मिलाकर के माहौल बड़ा ही अच्छा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम के 6 बजे फांसी दे दी जाएगी, और जैसे ये सुना वहां पर जितने भी लोग थे वो हैरान रह गए। फौरन म्यूजिक रुक गया, नाच गाना रुक गया, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उदास हो गए। तभी कमरे में से वजीर की आवाज गूंजी, बोले, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फांसी के लिए शाम के 6 बजे तक का वक्त दिया है, तब तक तो हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेरा बर्थडे है आज। और उसके बाद में दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तुम जश्न मनाना चाहते हो। तो वजीर ने किसी तरह से सबको समझाया और एक बार फिर से जश्न शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, घर वालों को बुरा लग रहा था, लेकिन वजीर की खुशी के लिए सभी लोग जश्न में शामिल हो गए। म्यूजिक बजने लगा, डांस होने लगा, खाना पीना चलने लगा। ये बात सैनिकों ने सम्राट तक पहुंचाई। सम्राट पूरा माजरा समझने के लिए वजीर के घर पे पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी हैरान। उन्होंने कहा, ये क्या है, तुमको पता है ना कि मैंने तुमको फांसी दी है, वजीर से उन्होंने पूछा, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम के 6 बजे का मुकर्रर किया, और इस तरह से मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। अगर आप मुझे ये वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये सेलिब्रेशन कैसे कर पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास आज शाम तक का वक्त है, और मैं ये क्यों जाया करूं, इसको रोने में बिता दूं मैं। मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं, वजीर ने कहा। तो ये सुनकर के राजा ने एकदम से वजीर को गले लगा लिया, कहा कि ये कमाल की बात बोली तुमने, मोटिवेट कर दिया। मतलब जिस इंसान को वक्त की कदर है, वो जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसको मौत कैसे दी जा सकती है, ये तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है।
तुम्हें जीने का पूरा हक है और तुम्हारी बातों ने हमारा न सिर्फ दिल खुश किया है बल्कि हमको एक नई सीख दी है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। हमने तुमको मौत की सजा सुनाई लेकिन उसके बाद में भी तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हारी फांसी की सजा माफ। राजा ने कहा, वजीर खुश, रिश्तेदार खुश, दोस्त खुश, फिर से जश्न, और अब रियल जश्न शुरू हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी बच गई। समझिए आप इस चीज को कि जिंदगी खूबसूरत है लेकिन इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हालांकि ये जरूर है कि जिंदगी में कई एक बार ऐसा वक्त आता है जबकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ऐसे में हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, मुस्कुराहट के साथ में उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास में बहुत लिमिटेड है उसका पूरा सदुपयोग करें, जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, ये हमेशा ध्यान रखें। पिज्जा घर में आता है तो जम के खाते हैं ना उसको एंजॉय करके। वैसे खत्म होने से पहले जिंदगी को भरपूर जी लो। आपके हिस्से की जिंदगी कोई और नहीं जी सकता और ये मुश्किलें तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट ये मुस्कुराहट गई या रो करके आपने वक्त गुजारा उसका कोई सेंस नहीं है। एक दिन जाना सब नहीं है तो उसको लेकर के परेशान होने का क्या मतलब। वो होता है ना जब हम किसी ऐसे इंसान से आखिरी बार मिलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, और हमको पता है कि अब इससे दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो जो भी कुछ लम्हे हैं उनको हम भरपूर जी लें, या तो उसके साथ में या फिर परेशान होकर के रो करके बिता दें, हमारे ऊपर है। बेहतर ये होगा कि जो भी लम्हे उसके साथ में मिले हैं उनको भरपूर जिया जाए, प्यार के साथ में सारे अरमान पूरे किए जाए, क्योंकि रोना तो बाद में भी है ना, उससे दूर जाने के बाद में। बस वैसे ही जो भी लम्हे आपके पास में हैं उन्हें भरपूर जिए, ये बहुत जरूरी है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, लाइफ में बैलेंस रहना है तो सबसे पहले तो अपने खुशी और गम के इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जैसे जब हमारा कोई काम सही हो जाता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं अगर हमारा काम खराब हो जाए तो इतना बुरा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं। बस यही तो वो गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने काम पर कंसिस्टेंट रहें तो हम और हमारी कामयाबी कहीं नहीं अटकती। तो बैलेंस्ड रहिए और सुकून में रहिए।

0: घायल तो यहां पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जी हां, चोट किसको नहीं लगती, फेलियर कौन नहीं होता, जिंदगी में परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं आती, लेकिन उन सब का सामना करके, उसका एक्सपीरियंस करके, अपनी गलतियों से सबक लेकर जो फिर एक नई तैयारी के साथ उठता है, फिर आगे बढ़ता है, वही इंसान है।
1: Walk Talk Radio.
2: Yeah. Be cool, Ross, baby. Lost in your love.

यार बैठे नाड़ दिंदा नहीं अटेंशन मैं कोई परी महफिल च तेरा ही ख्याल लेंदे आ।

जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन इसको जीना कैसे है, बस उसको सीखने की जरूरत है। कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियां भी आएंगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, बस इसको सीखने की जरूरत है।

देखो दोस्त, अगर किसी को कुछ देना हो ना तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते।

धोखा भी तो उसी को मिलता है जो इजिली दूसरों पर भरोसा करता है। बिना किसी को जाने पहचाने किसी पर विश्वास करना जरूरी नहीं है कि आपके मुंह के सामने तारीफ करने वाले पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। इसीलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के बारे में जानना पहचानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान वाकई आपको समझता है या फिर आपको यूज कर रहा है। और जिस दिन आप ये जान लोगे आप खुद को कभी भी कोसोगे नहीं।

0: वॉक टॉक,
1: छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ के हर पल को खुशनुमा बनाइए, लेकिन ये कैसे होगा जब आप अपने माइंड को टेंशन फ्री रखेंगे। तो जो भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उनका सलूशन ढूंढ के उनको खत्म करिए और लाइफ को खुश होकर जी लीजिए।

परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी, कौन सी ऐसी चीज है?

लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए, और देखिए जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती हैं। कोशिश तो करके देखिए। वॉक टॉक रेडियो।

0: बुक रीडिंग हम में से बहुत लोगों को बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट लगता है, पता है क्यों? टाइम नहीं है यार, बहुत कुछ करने का है, बिजनेस है, फोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें करनी है और लोगों से बातें करनी है, जगहें देखनी है। किसी सफर पे अकेले निकलना, हम सब लोग ग्रुप में निकलते हैं, दोस्तों के साथ निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, बट खुद के साथ नहीं निकलते क्योंकि डर लगता है। हम अपने दोस्त थोड़े ना है, हमें अपना अकेलापन खा जाता है। अगर खुद को फील करना है तो अकेले निकलिए सफर पे और एक किताब लेके निकलिए। लेकिन एक जो रीडिंग हैबिट होती है ना, वो आपको आपसे कनेक्ट करती है।
1: कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से।
0: किसी इंसान ने अपने 60 साल 70 साल का तजुर्बा 60 से 150 पन्ने की किताब में डाल दिया आपके लिए। अगर आप उस किताब के साथ दोस्ती कर लेंगे तो यकीन मानिए ये दोस्ती आपकी खुद से हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपका खुद का है।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम अपने किसी न किसी अपने से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं क्या सोचकर नहीं कह पाते। पता नहीं क्या सोचकर हम रुक जाते हैं। झिझक हमारे अंदर रहती है कि अगर हमने सामने वाले को वो मन की बात कह दी तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन इस सोच के चलते वक्त बीत जाता है, इंसान भी चला जाता है और रह जाता है तो सिर्फ एक रिग्रेट कि हमने तब वो बात क्यों नहीं कही, क्योंकि अब वो इंसान ना हमारे सामने है ना हमारे पास है कि हम उससे अपने दिल की बात कह दें। दोस्त, एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर ऐसे ही रह जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल ये होगा कि हमें उस वक्त बोल देना चाहिए था। तो झिझकिए मत, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखिए और खुश रहिए।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

अगर आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। राहों में बस कहीं तुम भटक मत जाना, चलते चलते कहीं तुम थक मत जाना। ठान लिया है ना अगर मंजिल को पाना, बस मुसाफिर बनकर चलते रहो, कदम से कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और हर इंसान सफल होने के लिए ही कड़ी मेहनत करता है, कड़ी धूप में चलता है।

0: जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
1: मैं बॉडी बनाता हूँ तेरे लिए, मैं अंडे झंडे खाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक

जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज की दुनिया में बहुत से दोगले लोग पाए जाते हैं जो अगर आपके दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की भी कमी नहीं महसूस होने देते। इसीलिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों से बचे रहें और हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, तू भीड़ से अलग चलकर दिखा।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: रेडियो।
1: प्रयास करने का एक सबूत होती हैं गलतियां। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो।
1: उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत है।

0: पता है बड़े बड़े लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। जैसे वो हमेशा आने वाले 10 साल की प्लानिंग पहले ही कर देते हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जाना है वो पहले से ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। अगर यही क्वालिटी आपके अंदर या हमारे अंदर आ जाए, सोचो उसके बाद क्या होगा। जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनके अंदर भी तो यही क्वालिटी थी।
1: Walked

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: कभी सोचा है कि हम चैलेंजेस लेने से क्यों घबराते हैं? नहीं दोस्तों, नॉलेज कभी भी एक दायरे में रहने से नहीं बढ़ती, नॉलेज तो एक्सपेरिमेंट से बढ़ती है। तो अगर आपके पास चैलेंज फेस करने का मौका मिलता है तो घबराए नहीं, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप वो गेन करेंगे जो आप दुनिया को बता पाएंगे, दुनिया को प्रूव कर पाएंगे। याद रखें कि ज्ञान हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ता है, ना कि चुनौतियों से दूर भागने से। और हो सकता है कि आपका कमाया हुआ यही ज्ञान कल के दिन किसी और के काम आ जाए।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक रेडियो। योर फर्स्ट वर्कआउट विल बी बैड, योर फर्स्ट पॉडकास्ट विल बी बैड, योर फर्स्ट स्पीच विल बी बैड, योर फर्स्ट वीडियो विल बी बैड, योर फर्स्ट एनीथिंग विल बी बैड, बट यू कांट मेक इट 100 विदाउट मेकिंग योर फर्स्ट। सो पुट एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, जस्ट कीप डूइंग इट विदाउट द फियर ऑफ फेलियर।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio.
1: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: Walk Talk.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक।
2: कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप किसी को अपना दुख बताओगे तो सामने वाला आपको अपना 4 गुना दुख बताएगा। इसीलिए किसी को अपने दुख बताने से बेटर है आप उन्हें खुद ब खुद सॉल्व करें, तभी आप खुश रह पाओगे।
1: Tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: दोस्तों, हर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं। करियर में आगे बढ़ते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हमें दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और तब ये मिक्स इमोशंस वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसकी खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि दो अच्छे अवसर हमें मिले, दुख इस बात का कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज होने के बजाय खुद पर भरोसा करके एक को चुन लो, क्योंकि दोस्त ऑप्शंस आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों आपकी काबिलियत से ही बनते हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी गप देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
2: दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो।
1: हमेशा रिश्तों की वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, अपनों के साथ गहरा रिश्ता, उसकी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बुरे से बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं, यही है जो वाकई हमें अपना समझते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। ऐसे रिश्तों की कद्र करना, वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें समझ नहीं होती कि सही कौन है, गलत कौन है, अपने कौन है, पराए कौन है। जिनको हम अपना समझते हैं वो पराए निकलते हैं, और जिनको पराए समझते हैं वो कभी कभी अपना निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनों पर विश्वास करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: उम्मीद, कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: Walk Talk Radio.
3: जिंदगी में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दूसरों की नकल कब तक करते रहोगे, दूसरों का हाथ पकड़कर आखिर कब तक चलते रहोगे। अगर लाइफ में खुद का कुछ करना है ना, तो खुद का एक रास्ता बनाए कि तुम्हें चलना कहाँ है और तुम्हारी मंजिल कहाँ है।

0: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
4: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
3: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक रेडियो,
5: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक।

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
2: Walk Talk Radio.
3: नाम उन्हीं का होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। आप कहीं भी हैं, ये मत सोचिए कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप क्या बन सकते हैं ये आपकी मेहनत तय करती है। तो उठिए, मेहनत करिए और अपने एम को पाने में लग जाइए।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ये है वॉक टॉक रेडियो,
4: वॉक टॉक रेडियो,
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ,
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
5: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
3: Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
1: Walk Talk Radio. Walk Talk.
0: ये है Walk Talk Radio.
2: Walk Talk Radio.
3: दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में कुछ न कुछ जरूर होना तय है। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये सोचकर हम आगे बढ़ना बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ते जाइए। क्या पता बुरे दौर में भी क्या ऐसा हो जाए जो आपको कुछ अच्छे की तरफ मोड़ दे। दौर बुरा हो या अच्छा, हौसला मत हारिए। वक्त ही तो है, एक दिन सबका बदलता है।
0: Tune in for a better life.
4: Tune in for-

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: पुराने दोस्त और स्कूल के दिन काफी प्रीशियस होते हैं हमारी जिंदगी में। स्कूल जहाँ से हमारे नए सफर की शुरुआत होती है, नए दोस्तों से मिलना, जहाँ हम ढेर सारी मस्तियां करते हैं, जहाँ हम हंसते भी हैं, खेलते भी हैं और सीखते भी हैं। लाइफ में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें आज भी पता है हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम, कौन सा टीचर हमारा फेवरेट था और किससे हमें सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, किस किस तरह से गेम्स हम खेलते थे, हमारे स्कूल के दोस्त, वो सारी चीजें हमें हमेशा जो है याद रहती है। जिंदगी में सब कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन स्कूल के वो पल हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं।
2: वॉक टॉक रेडियो।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
4: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

0: रेडियो।
1: जैसे को तैसा, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जरा खुद सोचो, अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करें तो हम में और उस इंसान में जिसने हमारे साथ गलत किया है क्या फर्क रह जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, माफ करना सीखो। एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है माफ करना, और वो भी तब जब वो खुद सही और सामने वाला गलत हो। तो जैसे के साथ तैसा नहीं, बल्कि उसे माफ करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloth जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा। then we try to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures, हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए, vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने banana leaves use किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट। वॉक टॉक रेडियो।

मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा। Walk, talk,

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा। मेरी टीम में भी अगर आप देखें देर आर 80-90% फीमेल्स इन माई टीम, और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: रॉक टॉक
1: रेडियो। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।
2: Tune in for a better life.